सच में कई बार बहुत ही हैरानी होती है। जब जब दुनिया को हम देखते हैं तो ऐसे ही मन में ख्याल आते हैं कि दुनिया क्यों बनाई हो गई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच

0: रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सैकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नदायशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
4: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
4: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। इसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
5: ब्रिक्स वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली ट्रेड।
6: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
5: वसुदेव कुटुंबकम।
1: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प योजना।

0: September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांगी रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरेम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन के मोकी में ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी, पुतिन, फिजिशियन। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार 4थे और कुल 6ठे खिताब पर नजरें। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 वर्ष की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 साल पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है, इसके आधार पर प्रदूषण

0: Guru Granth Singh Sahib today. In a social media post, Mr. Shah said that the sacred scripture encompasses invaluable teachings on service, sacrifice and equality. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS summit under India's presidency to begin shortly in New Delhi. Focus on global governance, multilateralism, trade, security and supply chains. World leaders assemble for two-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping this evening. Prime Minister Modi holds bilaterals with his Malaysian, Vietnamese and Ethiopian counterparts, also confers with Crown Prince of Abu Dhabi. Houthi rebels in Yemen see strategic islands tightening grip on Red Sea shipping route. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Orange alert for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, Telangana and Vidarbha for today. And in hockey, Indian women team enters Junior Asia Cup 2026 final, defeating South Korea 5-1 in Mochi, China. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा. भारत की अध्यक्षता में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे. अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन. वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. अबू धाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की. यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत. सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की. छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट. और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया. और अब समाचार विस्तार से. 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं. दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं. 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं. सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण. और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से. जी अंकित.
2: जी जागृति. देखिए
1: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और इस सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं.
2: जी जागृति, देखिए ब्रिक्स इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है.
1: जी
2: विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं. अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे. इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे. ये नेता इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे. इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे. शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे. ये देखिए भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है. अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है. इसके साथ

0: जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह यह भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति
1: जी, धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी चिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं, और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
1: जी,
2: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति चिनफिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
1: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगशो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थीं, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचार

0: समाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
1: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व तक।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप

हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबुधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालिंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड अब प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म अब पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो

0: हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो, इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
0: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
0: क्या हम सी फेरर इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
1: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
0: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशन और पॉलिसी प्रायोरिटी आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: I would like to say that the outcome document...
3: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
2: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
4: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

0: के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन

0: टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आर्यना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आर्यना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान, पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालिंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. BRICS nations adopts New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action. Emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of red notice fugitive Amritpal Singh from Moldova, and in US Open, defending champion Arina Sabalenka to take on Elena Rybakina in women's singles title clash tonight. The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration on the first day of the summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. It highlighted the need to tackle hunger and poverty and strengthen the global response to climate change. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: Here is more from our correspondent.
3: BRICS member countries expressed deep concern over continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. They urged to

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking your calls on your market related queries. But do remember that we do not address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें श्रोताओं चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह सिद्धार्थ कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
2: प्राची नमस्कार और राजेश
0: आपको भी वेलकम टू यू
2: गुड इवनिंग राजेश
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं मगर उससे पहले आइए जाने सुर्खियां
0: ब्रिक्स नेशंस अडॉप्ट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ब्रिक्स समिट 2026 लीडर्स एडवोकेट फॉर मल्टीलैटरल अप्रोच दैट रिस्पेक्ट्स diverse viewpoints and positions on global issues. SEBI releases consultation paper proposing changes to closing auction session and derivatives settlement. And benchmark domestic indices register weekly decline of over 2%.
1: ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स समिट 2026 के पहले दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया नेताओं ने वैश्विक मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण और रुख का सम्मान करने वाले बहुपक्षीय नजरिए को बनाए रखने की बात कही सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन और डेरिवेटिव सेटलमेंट में बदलाव का प्रस्ताव देते हुए परामर्श पत्र जारी किया और प्रमुख शेयर सूचकांकों में 2% से अधिक की साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: ब्रिक्स देशों ने दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीकरण तथा अलगाव की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा 2026 में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक स्तर पर सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी के मौजूदा रुझान पर चिंता व्यक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सत्र के समापन पर इस घोषणा को अपनाने का प्रस्ताव रखा अपने समापन भाषण में श्री मोदी ने कहा कि आज अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा सदस्य देशों के साझा संकल्प के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है
3: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता रिप्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है आज एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले हमने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और उनके नियमों के निर्माण में ग्लोबल साउथ की बराबर भागीदारी होनी चाहिए
1: सिद्धार्थ ग्लोबल साउथ का साझा संकल्प इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए
2: नहीं देखिए ब्रिक्स का जो जब बनाया गया था तो ये एक धारणा थी ये मानना था कि तकरीबन 2006 में और सन 2000 में इसकी कल्पना
1: जी।
2: एक व्यक्ति थे गोल्डमैन सैक्स में जिन्होंने इसकी कल्पना की और उसके बाद ये माना कि आने वाले समय में ये चार देश जिसमें ब्राजील था हिंदुस्तान था इंडिया था चाइना और तो इनकी ये जो है उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है उनमें इसमें इनका बड़ा रोल होगा और साथ साथ उसमें उसके बाद साउथ अफ्रीका भी जुड़ा
1: जी
2: तो और उसका जो बेसिक, जब पहली बार ये इस ब्रिक्स सम्मेलन हुआ 2009-10 में जो सम्मेलन हुआ, उसमें ये था कि कैसे जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हैं उनको कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाए, कैसे ग्लोबल साउथ का जो सवाल आपने किया कि उनको जो है कैसे उनको भी इस पूरा जो दुनिया की बदलती हुई परिस्थिति उसमें उनको भी बराबर का हिस्सा दिया जाए। ग्लोबल साउथ से हमारा मतलब होता है जो ऐसे देश जो डेवलपिंग देश हैं, जो भी थोड़ा पिछड़ गए हैं, पीछे हैं, अभी पूरी तरह से
1: विकसित नहीं, विकास की राह में आगे हैं।
2: हाँ, आ रहे हैं, मतलब विकास की राह पर हैं, आगे नहीं है, वो पीछे हैं, उनको भी साथ लेके चलना है बदलते हुए समय के। लेकिन आप देखेंगे जैसा अभी दिख रहा है कि जो मल्टीलैटरलिज्म है, डेमोक्रेटिक जो अलग अलग जो विचारों को लेके जो है, अब उतना उसकी उसको समावेश करना या उसको एक्सेप्ट करना, उसको लेके जो है एक विरोधाभास है या आपस में एक तालमेल जिसको कहें नहीं है, या उसे एक्सेप्ट करना कि उस विरोधाभास में भी हम साथ मिलकर काम करें, साथ मिलकर बैठें। तो मुझे लगता है एक तो एक वही सबसे बड़ा वो है, साथ साथ जो अभी दुनिया में हम देख रहे हैं चारों तरफ जिस तरह का जो एक, चाहे आप अमेरिका ईरान का हो या अमेरिका ईरान और इज़राइल एक तरफ है, यूक्रेन रशिया का जो लड़ाई चल रही है, तो इसको लेके भी चिंता है, क्योंकि कि ब्रिक्स का मानना है कि इस समूह का मानना है कि इन सब चीज़ों का जो समाधान सिर्फ बातचीत से हो सकता है, लड़ाई से किसी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता।
0: So Siddharth, to what you said about the leaders advocating for a multilateral approach that respects diverse national viewpoints and positions on crucial global issues, and one major development that has taken place is India's Middle East peace push at BRICS, where UAE Crown Prince met with Iranian President Pezeshkian. So that's a step in the right direction, and the real essence of what is happening at BRICS is showcased in this meeting. Perhaps there could be some outcome, positive outcome.
2: Absolutely, Rajesh. And I think India has been taking this position or making or trying to bring nations with different viewpoints or with differences to talk to each other and bring them to a reasonable some kind of a reasonable dialogue to reach some kind of a solution to the existing stalemate or issues. And as you rightly said, with the UAE and heads of state from UAE or and Iran talking, so I think that's a big achievement for this round of Delhi BRICS leaders meeting, I would say. And we have been saying this, and we've been also saying that India is also trying to push the cause of nations where we see today supply chains are disrupted, trade protectionism is at its height, plus there is stress in terms of fiscal stress, and so India is also trying to ensure that globally there is no the supplies of energy as far as the issue of energy supplies is concerned, as far as other supplies of fertilizer or essential items. So we've been also pushing the cause of those causes also.
0: We have two callers online with us, both from Delhi. First, we go to Premjeet. Premjeet, a warm welcome. Please ask your question.
4: Very good evening to all of you, sir.
0: Good evening.
4: And we are very blessed that we are having BRICS summit right now.
0: जी
4: सिद्धार्थ सर, मेरा सर सवाल ये है कि अभी प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा कि सी फेरर को, बिकॉज सर आई एम ऑल्सो ए सी फेरर, इंक्रोच करने के लिए और उनके इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे ब्रिक्स के सिंडिकेट को एक्नॉलेज किया, सर आप इस पर जरा अपना प्रकाश डालें सर, धन्यवाद सर।
2: नहीं प्रेमजीत जी, गुड इवनिंग, नमस्कार आपको, और आपने जो सवाल उठाया आज के समय में, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है

0: अटैक्स जो हैं पानी के जो जहाज़ जिनके थ्रू ये सप्लाईज ऑयल एंड गैस की सप्लाईज होती है उन पे हो रहा है। तो और बिल्कुल वाजिब बात आपने जो कही, सीफेरर्स जो आप लोग उस पर काम करते हैं उसको उसका संचालन करते हैं, तो उनके उनकी जान माल और उनकी सुरक्षा जो है बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात को शायद उठाने की कोशिश की और उन्होंने ये संदेश भेजने की कोशिश की है कि कम से कम ऐसे उपाय किए जाएँ ताकि ऐसी चीज स्थिति से हम लोग बच पाएँ।
1: दिल्ली से हमारे साथ विनय जुड़ रहे हैं। विनय जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: मैम, मुझे पूछना है कि क्या कहते हैं, अगर निफ्टी में किसी स्टॉक का वेट 10% है तो उसमें अगर 1 या 2 पॉइंट की मूवमेंट होती है तो इंडेक्स में कितनी मूवमेंट होती है, नंबर वन। नंबर टू, कि हमारा अगर निफ्टी 20 पॉइंट अगर डे एंड पे एंड होता है, क्लोज होता है 20 पॉइंट प्लस में, तो जो
0: अमित जी, एक तो आपका पहला सवाल बहुत टेक्निकल सवाल है कि कितना पॉइंट अगर वो चढ़ता है किसी शेयर में, अगर वृद्धि होती है तो उससे निफ्टी पे कितना इम्पैक्ट आता है। और जहाँ तक आपने उसका बीएसई से जो आपने कंपैरिजन किया, एक वो मोटा अनुमान माना जाता है कि तकरीबन 3 गुना है, बट ऐसा कोई मतलब कोई इस तरह की कोई वो नहीं है कि विनय जी माफ़ कीजिएगा, आपका मैंने नाम गलत बोला, विनय जी, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई उसका कोई ऐसा कोई आधार है कि जिसको हम मान के चलें कि इतना गिरेगा तो इतना ही होगा। हालांकि और इस आधार को भी अभी जो नया सेबी ने अभी जो सिस्टम आया था क्लोजिंग ऑक्शन का, जो प्राइस डिस्कवरी का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के शेयर्स का, उसमें इस चीज पे भी कहीं ना कहीं एक वॉलेटिलिटी आ रही थी, तो मुझे लगता है ऐसा कोई इसको आधार ना माने आप। और
1: जी, दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी, मार्केट मंत्री टीम को नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मेरा प्रश्न सीधा सा ये है सर कि अभी जो ब्रिक्स ने समिट हो रहा है अपने देश में नई दिल्ली में, तो एक ब्रिक्स करेंसी की बात सामने आ रही है, तो क्या ये ब्रिक्स करेंसी डॉलर और यूरो की तरह ही मतलब प्रचलन में आ जाएगा सर? और दूसरा प्रश्न ये है सर कि जैसे अभी ट्रंप अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप जी का स्टेटमेंट आया था कि ईरान वॉर कंक्लूड सून, तो क्या ईरान वॉर मतलब खत्म होने के आसार हैं सर? धन्यवाद।
0: नहीं, जहां तक आपकी अमित जी आपका सवाल है करेंसी को लेके, तो इसकी बात हमेशा समय समय पर होती आई है, लेकिन ऐसा कोई ठोस अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है जहां पे ब्रिक्स जहां ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि ब्रिक्स देश आपस में अपनी करेंसीज में अपने जो व्यापार है वो अपनी करेंसी में करें, ये एक इस पर एक जोर है। साथ साथ जो हमारे पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको, जो सेंट्रल बैंक के पेमेंट सिस्टम है उनको कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से समावेश करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी ब्रिक्स की कोई करेंसी इस तरह की होगी या उस पर कोई बहुत सीरियसली विचार हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका दूसरा एक सवाल और भी था,
4: I think perhaps you will
0: call. उनका सवाल था अमेरिका का और ईरान का जो युद्ध है कि वो शायद अमेरिका राष्ट्रपति का वो हवाला दे रहे थे कि जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी ऐसा कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो स्थिति आज की है वो स्थिति काफी मतलब चिंताजनक और खराब है, तो ऐसा कोई संकेत नहीं कि युद्ध तुरंत खत्म होने जा रहा है।
4: Moving on, markets regulator SEBI today proposed changes to the methodology for calculating expiry day settlement prices of index and stock derivatives following a review of the newly introduced closing auction session CAS framework. In a consultation paper, SEBI proposed 2 options for determining the settlement prices: a blended volume weighted average price, VWAP, based on trades executed during the last 30 minutes of the continuous trading session, CTS, and the 10-minute CAS or continuation of the existing CTS VWAP methodology. The proposals follow feedback received from market participants on the use of the CAS-determined closing price for settling derivative contracts on expiry. Determination of derivative settlement prices based on the closing price arrived at through CAS was among the significant areas of feedback received by SEBI. The Securities and Exchange Board of India has sought comments from stakeholders on the proposals till the 3rd of October.

0: Siddharth, if you could very in simple terms explain to our listeners the proposed changes to the methodology for calculating the expiry day settlement prices.
1: See, Rajesh, I think this closing auction session was a methodology which was brought in by SEBI basically for better pricing, price discovery of stocks which are which have derivatives trading. So I think, and since they came in, there was a lot of volatility being observed in the prices at both the exchanges. So I think, and obviously there were a lot of feedback to the SEBI. I would only also say that it's good on part of the market regulator that they have taken cognizance of this issue and of the feedback, and have also proposed a new, I would say, volume weighted average price, which was the earlier methodology to discover the price at the closing of the each session. So I think now what they're proposing is a blend of all three, the continuous trading system plus the blend of volume weighted average price and also the closing, the new system, the closing auction session. So I think basically, and they are also proposing some changes in the timing and also the transition from the continuous trading system to the CAS. So I think these are two, three major changes which they have proposed so that to basically fine tune the closing auction system that was implemented. And also I think this is for now, obviously these are proposals which they have sought feedback, and then finally what comes out we'll have to wait.
2: जयशंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: गुड इवनिंग. नमस्ते मार्केट मंथर टीम.
2: नमस्ते
3: सर. आई हैव टू क्वेश्चंस. वन ऑफ कोर्स रिलेटेड टू ब्रिक्स. व्हाट लिवरेज दिस ब्रिक्स हैज, बिकॉज़ वी वांटेड टू ब्रिक्स वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम डॉलर ट्रेड, बट हमारा युआन से जमता नहीं है. रशियंस का हम रूबल रुपीज का हमारा रशिया का रुपीज से जमता नहीं है. उनको हमारे पास खरीदने के लिए कुछ है नहीं ज्यादा. हम उनसे ज्यादा खरीदते हैं. तो व्हाट लिवरेज leverage could happen, that we could have de-dollarized the trade and all that, but it's not happening. So what leverage this group as such has, that is one question. Second question is, Adi sir, ye aane wala hai 8th day commission ka, so there will be a lot of cash flow into the hands of the people retired as well as who are employed. So how this will affect the stock market? Will this money flow into the stock market or again go into the properties or and other things which will again jack up the prices of the property but not the market? So what is your opinion all on these two factors? So thank you.
1: See, Jayashankar ji, answering your question, I would say de-dollarization was never the aim of BRICS. So I don't think that is right. From day one, I think even if you look at the first declaration, BRICS nations always favored democratization and reforms in the international financial institutions, basically reform of United Nations and also International Monetary Fund, the World Bank, and it should be reformed to now reflect the changing demographic changes, the changes in the world order. So basically that was, and also the other thing was energy security plus cooperation between nations and also supporting these global south, the nations which are still developing. So, and also giving financial assistance and removing trade barriers between nations. So I think all those were the basic aims, and there to a large extent things have moved. And So that is one part of the question. Answer to your second question, 8th pay commission, if I am not wrong, I don't think any money would flow in the current financial year from the 8th pay commission, because the recommendations are still unworks. So I don't see money coming in. So I don't think there is a reason for me to answer that question.
2: मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं. रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: हेलो
2: जी.
0: Nathanaka ji, please ask your question.
4: Hello, good evening sir.
0: Good evening.
4: मेरा सवाल है कि अभी दिल्ली में जो ब्रिक्स परिषद हो रही है, उसमें कुछ चुने हुए कुछ 10-12 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय जो बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ईरान और अमेरिका का, उसके बारे में उनमें कुछ डिस्कशन होता है कि नहीं? कुछ हो गया ऐसा? कुछ सवाल तो नहीं आया है. ऐसा कुछ होने की उम्मीद है क्या? नहीं तो आपकी उसमें क्या राय है? थैंक यू.
1: नहीं, रत्नाकर जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल उस पर डिस्कशन हुआ है और डिस्कशन होते भी हैं इस ऐसे जब बिसाइड्स यूएई एंड आल्सो द डिक्लेरेशन आल्सो हैज सेड दैट कोई भी जो है युद्ध से किसी भी चीज का समाधान नहीं होगा. तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन में इसका मेंशन भी है कि लड़ाई से किसी भी चीज का समाधान नहीं होगा, केवल बातचीत के से ही जो है ऐसी चीज़ों का समाधान हो सकता है. तो मुझे लगता है रत्नाकर जी ये काफ़ी ऐसे जब भी ऐसे कोई समूह आपस में बैठते हैं 10-11 देश और साथ में पार्टनर नेशंस भी हैं 20 देश, तो ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल सीरियस डिस्कशंस होते हैं.
2: ठाणे से हमारे साथ गुरुनाथ जुड़ रहे हैं. गुरुनाथ जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए. गुरुनाथ जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
5: हाँ सुन पा रहा हूँ मैम
2: जी, कृपया अपना सवाल पूछिए.
5: मैम नमस्कार.
2: नमस्कार.
5: हेलो,
0: आप सवाल पूछे गुरुनाथ जी.
5: हाँ जी, हाँ जी सर. सर मेरा क्वेश्चन है, अभी जो 6-7 महीने पहले जो वॉर चालू हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में, उससे पहले हमारी मार्केट तो ऐसे लगता था कि 1 लाख तक 1 लाख के अंकों को भी छू जाएगा. तो ये मतलब अभी जो मार्केट जो नीचे आ गई है, तो इसमें क्या मतलब FII या संस्थागत जो निवेशक होते हैं या डोमेस्टिक, क्या वो कम हो गए और क्या ये जो और है इसका असर हमारे मार्केट पे पड़ा है क्या? थैंक यू.
1: नहीं गुरुनाथ जी, बिल्कुल इस जो भी जियोपॉलिटिकल स्थिति है, जो दुनिया में इस समय अनिश्चितता है, उसका हमारी बाज़ार को भी उसने कहीं ना कहीं बाज़ार में वॉलेटिलिटी है या अनिश्चितता का माहौल से में बाज़ार में भी है. तो और हम दुनिया का पार्ट हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उस जो भी दुनिया में हो रहा है उससे हम अछूते रहेंगे. साथ साथ अगर आप देखेंगे जो 6-7 महीने में हुआ, टैरिफ को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ टैरिफ ट्रंप साहब आए तो उन्होंने दुनिया भर में टैरिफ लगाया, हमारे ऊपर भी लगाया और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए शॉर्ट टर्म में. और जहाँ तक वेस्ट एशिया जो ये लड़ाई चल रही है, उससे सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है तेल की कीमतें. और हम भारत जैसा देश जो 90% तेल आयात करता है, तो हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा जो इसका एक फिस्कल कॉस्ट है. और कहीं ना कहीं उस अनिश्चितता, वो जो अनिश्चितता है वो बाज़ार में भी दिख रही है. साथ साथ जो आपने बात कही कि FIIs ने भी पैसा निकाला, लेकिन FIIs ने पैसा सिर्फ इस कारण से नहीं निकाला. FIIs जो नेचर है उनका एज एन इन्वेस्टर, मेरा ये मानना है, वो जहाँ भी मौका देखते हैं उनको लगता है कि हाँ वो बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग उनका जो है इंटेंट रहता है, मोटिव रहता है, तो वो वहाँ पैसा लगाते हैं जहाँ जिस बाज़ार में उनको लगता है ज़्यादा है. तो ऐसा कोई
0: extent work on sentiments. Absolutely. And positive sentiments are required for markets to
1: yes,
0: go.
1: Yes, and despite that, Rajesh, our markets have not tanked. And even FIIs have withdrawn, even then, the domestic investors, both institutional and retail, have posed confidence in the Indian markets.
2: अन्य खबरों में, श्रोताओं, 4 सितंबर 2026 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 45 अरब डॉलर से बढ़कर 785.7 अरब डॉलर के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विदेशी मुद्रा संपत्ति 47 अरब डॉलर से अधिक बढ़कर लगभग 648 अरब डॉलर हो गई है. हालांकि सोने का भंडारण लगभग 2.5 अरब डॉलर से अधिक फिसलकर लगभग 114 अरब डॉलर रह गया है. और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से वीरेंद्र जुड़ रहे हैं. वीरेंद्र जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
6: हेलो
2: जी, अपना सवाल पूछिए.
6: मैम नमस्ते.
2: नमस्ते
6: मैडम. जो जैसे अभी ये सुन रहा था ना प्रोग्राम की ये सब चर्चा कर रहे हैं युद्ध वगैरह का, ईरान का, अमरीका का,
2: जी
6: तो ये तो कॉमन बात हो गई, सबको पता है, इस पे टाइम वेस्ट करना बेकार है. बजाय इस पे समाधान निकालिए कि जो विस्तार जो लड़ाई की वजह है, लड़ाई की वजह विस्तारवाद, और विस्तारवाद की वजह है पॉपुलेशन. तो चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, वो तिब्बत से विस्तार कर रहा है.
2: जी वीरेंद्र जी आप अपना सवाल पूछिए.
0: I think we lost touch with him. In the meantime, we have a story on the RBI governor interview, Prachi.
2: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिटरी और दूसरी योजनाओं से आने वाला निवेश बहुत मजबूत रहा है. एक साक्षात्कार में श्री मल्होत्रा ने कहा कि ये मजबूत निवेश भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में निवेशकों के भरोसे को दिखाता है और कम समय में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की क्षमता को भी सिद्ध करता है। बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी पर श्री मल्होत्रा ने बताया कि रिजर्व बैंक के पास नकदी को संभालने के लिए कई उपकरण हैं और वे जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि ऋण वृद्धि बढ़ने के साथ साथ करेंसी प्रचलन विदेशी मुद्रा बाजार

0: बाजार में दखल और बैंकों की कोषीय आवश्यकताओं के जरिए समय के साथ कुछ अतिरिक्त नकदी को वापस ले लिया जाएगा। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार पांचवें सप्ताह गिरावट आई। ये गिरावट कच्चे तेल के दाम बढ़ने और वैश्विक ब्याज दरों को लेकर चिंताओं के बीच दर्ज की गई। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1733 अंक यानी 2.3% गिरकर 74,782 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 500 अंक यानी 2% से अधिक फिसलकर 23,398 पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 लगभग 1.5% फिसला, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक इस सप्ताह लगभग 1% नीचे आया। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो बिकवाली अधिक रही और सप्ताह के दौरान प्रमुख क्षेत्र गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी रियल्टी में सबसे अधिक यानी 6.5% से अधिक की गिरावट आई। इसके बाद निफ्टी आईटी जिसमें सप्ताह के दौरान लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई।
1: सिद्धार्थ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इन द आरबीआई गवर्नर्स इंटरव्यू, ही इज रिफ्लेक्टेड स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज एंड कॉन्फिडेंस इन इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड द एबिलिटी इंडियाज एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉरन कैपिटल विद इन अ शॉर्ट पीरियड। सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट ही हैज मेड एंड ही इज क्वाइट पॉजिटिव अबाउट द ग्रोथ ऑफ इंडिया।
2: Rajesh, more than the statement that he's made, also the fact that we have got almost close to $130 billion through these FCNR deposits, that itself shows the current state of the Indian economy, the strength in the inherent strength in the Indian economy, and also what he's also reflected that because of this huge influx of money coming in, the liquidity is high in the market, but he's also assured the market that there's nothing to worry. RBI is looking into it. They are completely hands on the situation and already conducting operations to absorb the excess liquidity.
1: Okay. The European Commission has formally submitted its proposal to the European Council to sign and conclude the free trade agreement with India, marking a major step towards implementing the ambitious pact widely described as the mother of all deals. If authorized by the Council, the agreement will become the largest trade deal ever concluded by both the European Union and India. Now, this really augurs well. We don't have time. A very, very, very brief comment.
2: I think it opens up a big market for Indian exporters.
0: बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में आने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए।
2: धन्यवाद आप।
1: थैंक यू सिद्धार्थ फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, ब्रिक्स नेशंस अडॉप्ट द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन फर्स्ट डे ऑफ ब्रिक्स समिट 2026। लीडर्स एडवोकेट फॉर मल्टीलैटरल अप्रोच दैट रिस्पेक्ट्स डाइवर्स व्यू पॉइंट्स एंड पोजिशंस ऑन ग्लोबल इश्यूज। SEBI releases consultation paper proposing changes to closing auction session and derivatives settlement. Benchmark domestic indices register weekly decline of over 2%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

11:40 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप। प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत आपके साथ मैं विकास।

प्रेम पुजारी इस फिल्म का गीत पहुंच रहा है आप तक, और किशोर कुमार साहब का ये गीत छोड़े जा रहा हूं मैं इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। आज के लिए बस इतना ही, मुझे यानी विकास को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख

0: वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाली रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। ये निर्णय परीक्षा देने वाले छात्रों और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने तथा समय पर पहुंचने के लिए लिया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे। बीकेसी स्थित भारत डायमंड बोर्ड्स में आयोजित GJEPC पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लाल बागचा राजा के दर्शन करेंगे। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर जेवरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पे लिखी कहानी यानी गीतों भरी कहानी। तो सुनिए कहानी कदमों में आसमान, कहानी छोटू की। उस दिन नीलिमा देर तक सोई रही। अचानक पापा की आवाज से उसकी आंखें खुली। नीलू बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे अभी तक सोई हुई हो क्या? पापा सोने दो ना, मैं देर रात तक वो अपना फेवरेट शो देख रही थी ना, इसलिए उठ नहीं पाई। अब आज ऑफिस से छुट्टी, नीलिमा अलसाई हुई बोली। उफ, ये लड़की भी ना, ये कोई सोने का टाइम है? तुम्हें अपने सिवा किसी और की भी परवाह है? उठो जल्दी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, पापा ने सख्ती से कहा। तो नीलिमा उठकर बैठ गई। वो फ्रेश होकर हाथ में चाय का कप लिए पापा के पास आ गई। पापा गोविंद राम, जो आंखें बंद किए किसी उधेड़पुन में बैठे थे। क्या हुआ पापा, क्या बात है? आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा, नीलिमा बोले। उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर नीलिमा के पापा बोले, सुन रहा हूँ कि तुम वो फरीदाबाद वाला फूड आउटलेट बंद कर रही हो और स्टाफ को निकाल रही हो, क्या ये सच है? पापा आपको पता तो है वो चलता तो है नहीं और उससे कुछ प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है। बड़ी मुश्किल से सिर्फ स्टाफ की सैलरी निकल पाती है। अब ऐसे में उसे बंद ना करें तो क्या करें? नीलिमा, तुम्हें पता है इससे कितने लड़के बेरोजगार हो जाएंगे? और वो लड़का जो अभी अभी गांव से आया है वो कहाँ जाएगा? पापा चिंतित स्वर में बोले। होते हैं तो हो जाए, जहां मर्जी वहां जाए, हमने सबका ठेका थोड़ी ना ले रखा है। और वैसे भी इस दुनिया में कितने ही गरीब हैं, हम किस किस के बारे में सोचेंगे? और पापा, हम उन्हें एक महीने की सैलरी दे तो रहे हैं ना? नीलिमा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि उसके पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। उनके दिल के किसी कोने में कोई कहानी घटाओं की भांति घिराई थी और उमड़ घुमड़ रही थी। उनके होठ बुदबुदा उठे।

0: हजारों शब्द उगाए थे, लेकिन उन्हें चुप देखकर नीलिमा से ना रहा गया। वो बोली, पापा क्या सोच रहे हो? गोविंद राम मानो अचानक नींद से जागे, बोले, बेटा यहां बैठो मेरे पास। नीलिमा पापा की आंखों में देखते हुए और पास आकर बैठ गई। एक कहानी सुनोगी?
1: जी कौन सी कहानी?
0: छोटू, छोटू की कहानी। नीलिमा अपने पापा की आंखों में झांकने लगी थी। वहां एक नन्हा सा 9 साल का बच्चा नजर आ रहा था और किसी चलचित्र की भांति गोविंद राम फ्लैशबैक में जा चुके थे।
2: ए लड़के, तेरा नाम क्या है? अबे सुनाई नहीं देता क्या तुझे?
0: जी छोटू।
2: ओए छोटू इधर आ, कहां मर गया था?
0: अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था और आंखों से छोटू की मासूमियत बहने लगी। उसका भोला सच्चा मन कराह उठा। दूर कहीं रेडियो पर एक गीत बज रहा था।

छोटू का बचपन उस ढाबे नुमा होटल के कामों में कैद होकर रह गया था। फटे पुराने कपड़े पहने छोटू कभी ग्राहकों को चाय के गिलास पकड़ाते देखा जाता तो कभी जूठे बर्तनों को साफ करते। मालिक की एक आवाज पर दौड़ते भागते छोटू की अपनी कोई मर्जी भी नहीं रह गई थी। सुबह से शाम तक, अभी सुन ओए लड़के, ओ छोटू इधर आ, छोटू कहाँ मर गया, छोटू ये कर, छोटू वो कर। अब तो छोटू अपना असली नाम तक भूल चुका।

अक्सर जब छोटू अकेला होता तो याद करता वो दिन जब वो अपने छोटे से गांव में अपनी माँ, बाबूजी और दो छोटे भाई बहनों के साथ रहा करता था। दिन भर गांव में उछल कूद करता, कभी गिल्ली डंडा खेलता तो कभी कंचे। गांव की अमरैया में जाकर कभी कच्चे अमियां तोड़कर लाकर खाता तो कभी जामुन। कितना खुश था वो अपने गांव में। उसके दोस्त भी कितने अच्छे थे। छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते थे मगर फिर सब एक हो जाते। गांव के गंगाराम ताऊ, मुरली भैया, भगत काका और भक्तिन काकी सब कितने अच्छे थे। और एक यहाँ के लोग हैं, बिना बात के ही दुत्कारते हैं, मानो गरीब होना कोई अपराध हो। छोटू को याद आता वो भयानक दिन जब उसके मजदूर बाबूजी के ऊपर दीवार गिर गई थी। वो कुछ दिन बिस्तर पर पड़े रहे और फिर चल बसे। माँ नन्हे बच्चों और छोटू को गले लगाकर कितना रोई थी, मगर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है भला?

छोटू की माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह बच्चों का पेट पाल रही थी। उन्हीं दिनों गांव के जगन काका जो शहर में रहते थे छोटू को काम दिलाने के लिए शहर ले आए थे। उसने सोचा था कि वो शहर में आकर खूब पैसे कमाएगा, अपनी माँ का सहारा बनेगा, छोटे भाई बहनों के लिए ढेर सारी टॉफियां और मिठाइयां खरीदेगा। वो सब कुछ खरीदेगा जो देखकर उसका मन ललचाता रहता है। लेकिन उस नन्हे मन को क्या पता था, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। जगन काका ने छोटू को एक ढाबे पर रखवा दिया था। ढाबे का मालिक एक संवेदनहीन इंसान था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि छोटू एक बच्चा है। उसे बस काम और काम से मतलब था। छोटू गांव की कच्ची गलियों और झोपड़ी से निकल कर आया था। उसने शहर की चकाचौंध नहीं देखी थी। सड़क के किनारे बैठकर जब वो जूठे बर्तन धोता तो उसकी आंखें सड़क पर ही लगी रहती थीं। स्कूली यूनिफॉर्म में स्कूल जाते बच्चों को देखकर उसके मन में भी अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाने का उत्साह आता। अपने माता पिता की उंगली थामे घूमते आइसक्रीम खाते बच्चों को देखकर छोटू का बाल मन भी ललचा उठता। सड़क की चकाचौंध में गुम छोटू से जब काम करने में देर होने लगती तो ढाबे का मालिक चिल्लाने लगता और फिर छोटू सहम कर जल्दी जल्दी काम करने लगता। और इस तरह दिन पंछियों की तरह उड़ते जा रहे थे। मौसम बदल रहा था लेकिन छोटू के नसीब का रंग वही का वही।

ढाबे के मालिक का घर भी ढाबे के बगल में ही था। मालिक कभी कभी छोटू को घर के काम करने के लिए भी भेजता। मालिक की एक छोटी सी बेटी थी नैनी। नैनी इकलौती बेटी थी। अकेली होने के नाते वो चाहती थी कि छोटू उसके साथ खेले। उसे खिलौनों से खेलती देखकर छोटू का बालमन भी खेलने को होता। एक दिन छोटू को मालिक ने घर से कुछ सामान लाने को भेजा। छोटू ने देखा कि नैनी खेल रही है। उसने छोटू को भी अपने साथ खेलने के लिए आवाज दी, लेकिन छोटू ने मालिक के डांट के डर से मना कर दिया। तो नैनी रोने लगी। उसकी माँ ने नैनी को रोते देखा तो उन्हें लगा कि शायद छोटू ने कुछ कहा है। तो उन्होंने आओ देखा न ताओ और निर्दोष छोटू की पिटाई कर दी। इधर छोटू सामान लेकर देर से पहुंचा तो मालिक ने भी उसे पीट दिया। उस दिन रात को छोटू अपनी माँ को याद कर बहुत रोया और उसने मन ही मन सोच लिया कि कल सुबह वो अपने गांव भाग जाएगा, अब यहां पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। रोते रोते उसकी आंख लग गई तो उसे अपने गांव के सपने आने लगे। उसका प्यारा गांव, उसकी वो स्वर्ग जैसी झोपड़ी जहां उसकी माँ उसे थपकी देकर सुलाया करती थी।

करके चुपचाप उठा और स्टेशन की ओर चल पड़ा। तभी अचानक उसे याद आया कि घर में बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी मिल पाती थी। छोटू चलता जा रहा था और सोचता जा रहा था, उसकी विधवा माँ दूसरों के खेतों में काम करके किस तरह से तीनों बच्चों का पेट पाल रही थी। कभी कभी तो आधे पेट भी रह जाना पड़ता था। बदन पर कपड़े के नाम पर बस एक फटी बनियान थी। उसे याद आई अपनी झोपड़ी नुमा घर की। घर के नाम पर दो मिट्टी की टूटी दीवारों के बीच एक टूटा हुआ छप्पर था जो बारिश के समय टप टप टपकता रहता था, और चारों प्राणी दीवारों से चिपक कर किसी तरह रात काटते थे। और यहाँ कम से कम पेट तो भर जाता है, कुछ फटे पुराने कपड़े भी मिल ही जाते हैं, और उसकी माँ को ढाबे का मालिक हर महीने कुछ पैसे भी भेज देता है, तो माँ की मदद भी हो जाती है। घर की गरीबी और पिस्ती जिंदगी के बारे में सोच सोच कर छोटू जड़ हो गया। उसके कदम जहां के तहां थम गए। आंखों में आंसू भरे भारी मन से लौट चला उसी ढाबे की ओर, और फिर एक बार अपनी बेबसी भरी जिंदगी से जद्दो

एक दिन छोटू ने देखा कि नैनी अपनी माँ की उंगली पकड़े उसके लिए टॉफियां लेकर आई है। नैनी ने माँ को बता दिया था कि उस दिन छोटू की गलती नहीं थी, तो मालकिन ने कहा कि छोटू कभी कभी नैनी के पास आकर उसके साथ खेला करे। धीरे धीरे छोटू और नैनी दोस्त बन गए थे। छोटू को जब भी काम से फुर्सत मिलती तो वो दौड़कर नैनी के पास आ जाता। दोनों साथ साथ खेलते, बातें करते, लड़ते झगड़ते। बच्चों का कोमल मन कितना मासूम और निश्चल होता है ना? वो किसी भेदभाव को नहीं जानता। वो कौन है, मैं कौन हूँ, मालिक कौन, कौन नौकर, कौन बड़ा कौन छोटा, ये बच्चों को नहीं पता होता। ये तो हम बड़े उनके दिमाग में डालते हैं। बच्चों को तो जरा बुरा लगा, झगड़ लिए, हट कर लिए, फिर थोड़ी देर में सब ठीक भी कर लिया। काश कि बड़े भी ऐसा कर पाते। खैर, नैनी जब पढ़ती तो छोटू भी उसके पास आकर बैठ जाता और टूटे फूटे शब्दों में पढ़ने की कोशिश करने लगता। छोटू को पढ़ना अच्छा लगता था। एक दिन काम से फुर्सत पाकर वो नैनी के किताब से उल्टा सीधा गलत सही पढ़ रहा था। नैनी ने देखा तो उसे सही सही पढ़ाने लगी। फिर उसने छोटू को अपनी एक पुरानी किताब दी और उसे कल पढ़कर आने के लिए कहा। छोटू देर रात तक पढ़ता रहा। अगले दिन उसकी आंख एक जोरदार थप्पड़ से खुली। वो चौंक कर उठकर बैठ गया। उसने देखा कि सामने यमराज की भांति ढाबे का मालिक खड़ा था। मालिक ने उसे गालियां देते हुए कॉलर पकड़कर झिझोड़ा। उसका

फटा पुराना बिस्तर उठाकर फेंक दिया। बिस्तर में से कुछ किताबें और खिलौने गिर पड़े। वो छोटू से पूछने लगा, ये किताबें और खिलौने कहाँ से आए? छोटू ने जवाब दिया कि ये उसे नैने ने दिए हैं। मगर मालिक को छोटू की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने छोटू को चोर समझा और डंडा ढूंढकर मारने के लिए दौड़ा। छोटू धीरे धीरे पिछले पैरों से सड़क की ओर खिसका और पलटकर तेज दौड़ा। अचानक तेजी से आती एक कार ने छोटू को टक्कर मार दी और छोटू वहीं गिर पड़ा।

0: कहते कहते गोविंद राम चुप हो गए थे। पापा फिर क्या, छोटू मर गया? नीलिमा ने रोते हुए पूछा। छोटू की सांसें बाकी थी, उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। किसी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी। जब छोटू होश में आया तो वो एक हाथ से अपंग हो चुका था। छोटू का मालिक एक कोने में खड़ा था, उसके नाम FIR हुई थी। अब उसे बाल श्रम अधिनियम के तहत जेल जाने और जुर्माना भरने से कोई नहीं बचा सकता था। पुलिस छोटू का बयान ले रही थी। बेटा डरो मत, बताओ किसने तुम्हें काम पर रखा था?
1: जी किसी ने भी नहीं, छोटू बोला। मैं अपनी मर्जी से कर रहा था।
0: क्या मालिक ने तुम्हें मारा पीटा? तुम क्यों भाग रहे थे?
1: नहीं साहब, मालिक बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे गरीब को उन्होंने सहारा दिया, उनके बहुत एहसान है हम पर।
0: तो भाग क्यों रहे थे? पुलिस ऑफिसर बोला।
1: साहब मैं तो बस खेल खेल में भाग रहा था, अचानक गाड़ी से टक्कर लग गई। मालिक तो बहुत अच्छे हैं साहब।
0: ढाबे के मालिक की आंखों से आंसू बहने लगे। आज छोटू कितना बड़ा हो गया था, उससे भी बड़ा।

पापा अब छोटू कहाँ है? नीलिमा ने धीरे से पूछा। ये देखो तुम्हारे सामने। फिर ये सब कुछ बदला कैसे? आप छोटू से गोविंद राम कैसे बने? मालिक का दिल पसीज गया था। मालकिन एक नेक महिला थी, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया। मेरे बचपन का नाम गोविंद था, जिसे मेरे माँ बाबूजी ने दिया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने धीरे धीरे खुद का काम शुरू किया और अब जो ये तुम रेस्टोरेंट चला रही हो ना, उसी कड़ी मेहनत का परिणाम है। एक बात बताओ नीलू,

एक सीमा के बाद समाज को वापस देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। फिर एक गहरी सांस लेकर गोविंद राम रुके, चश्मे के भीतर उमड़ आए आंसुओं को साफ किया, फिर बोले, नीलू बेटा एक बात कहूं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फरीदाबाद वाला आउटलेट बंद ना हो? कोई बात नहीं, स्टाफ की सैलरी तो आ ही जाती है ना, और वो लड़का जो नया नया गांव से आया है, उसे पूछना क्या वो आगे पढ़ना चाहता है। जी पापा, नीलिमा अब बदल चुकी थी, उसे समझ आ चुका था कि इंसान की जिंदगी का एक नजरिया और भी है, जिसमें अपनी खुदगर्जी के अलावा दूसरों के दुख दर्द को भी समझना जरूरी होता है, और शायद सही मायने में जीना इसी का नाम है।

तो दोस्तों ये थी कहानी छोटू की, कदमों तले आसमान। देखिए कितना अच्छा संदेश था, एक ऐसा लड़का जो अनाथ था लेकिन उसको सही दिशा दी ऐसे व्यक्ति ने, जिसके मन में प्रेम था, विश्वास था कि ये बच्चा एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। दोस्तों ऐसी कितनी ही घटनाएं हम अपने आसपास घटते देखते हैं। हमें चाहिए कि हम भी कहीं ना कहीं अपने मन में एक संवेदनशीलता पैदा करें और ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं एक आसरा दें, एक दिशा प्रदान करने में मदद करें ताकि वो अपने जीवन को सही दिशा दे पाएं। ये सब आप पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हम आप मिलकर बनते हैं एक ऐसी कड़ी जो कि समाज की बेहतरी के लिए काम करता है। तो ऐसे ही इस मानवतापूर्ण संदेश के साथ हम समेटते हैं अपना ये कार्यक्रम जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी। और ये कार्यक्रम से अब रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता के प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी, अनेक संस्कृतियां एक लय की भी विशेष प्रस्तुति रही, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने अनूठी सामूहिक संगीत प्रस्तुति में एक साथ भाग लिया। विभिन्न देशों के विविध संगीत परंपराओं से सजी इस सिंफनी में साझा कलात्मक अभिव्यक्ति रही, जिसमें ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और एकजुटता की भावना प्रतिबिंबित हुई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण भी किया। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे। बीकेसी स्थित भारत डायमंड बोर्ड्स में आयोजित GJEPC पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लाल बागचा राजा के दर्शन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर की लखपती दीदियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन महिलाओं ने लखपती बनकर सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नई दिल्ली में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। ये दीक्षांत समारोह देशभर में 23 केंद्रों पर आयोजित किया गया था। समारोह में श्री मेघवाल ने नए योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The BRICS nation adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
1: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता. Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है. आज adopt किया गया New Delhi Declaration हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है. अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले.
2: The 18th BRICS summit kicked off yesterday with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of the member

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप गीत सुहाने लेकर माधुरी है आज की रात आप सभी के साथ नमस्कार

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और प्यारे प्यारे गीत यहीं तो आपको सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे ही प्यारे गीतों की लड़ी लेकर आते हैं हम गीत सुहाने के बहाने।

किसे पता, लेकिन ये जो लम्हा है ना, ये हमारा है और इस वक्त हम इस लम्हे के साथ हैं और बहे चले जा रहे हैं। नज़र और नसीब में भी क्या इत्तेफाक है, नज़र उसे ही पसंद करती है जो नसीब में नहीं होता। और अगला गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म पारस मनी से।

बहुत ही मीठा सा ये गीत सुना आप सभी ने लता जी की आवाज़ में फिल्म दिल एक मंदिर से। और सच में रात जब इतनी खूबसूरत सुहानी हो जहां ये ऐसे मीठे मधुर गीत चल रहे हों तो लगता ही है कि ये रात रुक जाए, लेकिन समय कब किसी के बांधे बंधा है, कब किसी के रुके रुका है, ये तो बस आगे बढ़ने का नाम है। तो चलिए समय के साथ आगे बढ़ते हुए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं जो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए फिल्म शोला और शबनम से लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

प्यार का बंधन ऐसा होता भी नहीं है कि वो टूट जाए, और प्यार का बंधन क्या है इस गीत से ज्यादा अच्छा कौन कह सकता है।

ये गीत सुना आपने आशा और रफ़ी की आवाज़ों में, फिल्म नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे से, और इतना प्यारा ये गीत था। और अगला गीत जो हम लेकर आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, उससे पहले ये भी दो लाइनें आपकी नज़र करते हुए कि वो दर्द ही था जो समा गया आँखों में, वो दर्द ही था जो समा गया आँखों में, ज़माने की कितनी ही ठोकरें खाई हैं एक तुझे पाने में।

इन दिनों गरचे दकन में है बड़ी कदर सुखन कौन जाए जौक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। जौक का ये शेर बहुत ही खूब है दिल्ली पर, और हमने अभी दिल्ली वाला गीत भी सुना, और ये गीत हमने सुना फिल्म परिवार से मुकेश और उषा की आवाज़ों में।

माया फिल्म का ये गीत सुना आपने लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में, और गीत सुहाने जो सफ़र है हमारा ये अब बस मुकम्मल हुआ जाता है। तो इससे पहले एक गीत और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म छोटी सी मुलाकात से, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और टाला नहीं जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी तस्वीर भेंट की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाला चीनी मिट्टी का ये स्मृति चिन्ह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 12 अक्टूबर 2019 को तमिलनाडु के मामल्लपुरम में हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की साझेदारी को और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष जू चियाचिक से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत की अवसंरचना और परिवहन संपर्क संबंधी प्राथमिकताओं को समर्थन देने, स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण को बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और AIIB की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामूला और सोपोर समेत 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये अभियान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के पाकिस्तान स्थित संचालकों और उनके कथित स्थानीय समर्थकों के नेटवर्क से जुड़े सीमा पार आतंकी योजनाओं के मामले में चलाए गए। तलाशी के दौरान मामले से संबंधित और भी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। देश में रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for a commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
1: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
2: The 18th BRICS Summit kicked off yesterday with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between the decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
1: क्या हम seafarers emergency support network बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की maritime authorities और missions को जोड़ा जाएगा इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स मेडिकल असिस्टेंस परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है
2: After the conclusion of the session on the first day, Prime Minister Modi and the BRICS leaders planted saplings at the venue outside the lawns of Bharat Mandapam and posed for a family photo. They also visited the India Innovates exhibition. Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of the BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. Prime Minister Modi highlighted that both the sides must be guided by three mutuals, mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest. The two leaders expressed commitment to a fair, reasonable and mutually acceptable resolution of the boundary question, proceeding from the political perspective of their overall bilateral relations and the long-term interest of the two peoples. External Affairs Ministry said in a statement that the two leaders took note of the progress in people-to-people ties and underscored the need to further promote cultural exchanges, business linkages and greater mobility between the two countries. On economic and trade relations, they underlined the need to address each other's concerns, including structural trade imbalance and supply chain issues and facilitation of meaningful and predictable market access. A special cultural performance, Navarasa, the universe of shared emotions, is presented during the BRICS Leaders Summit Gala Dinner hosted by the Prime Minister at Bharat Mandapam in New Delhi. The cultural event featured the BRICS Symphony, One Rhythm, Many Cultures, bringing together musicians from BRICS members and partner countries in a unique collaborative musical performance. Union Home Minister Amit Shah is on a three-day visit to Mumbai. During his visit, he is scheduled to visit the Asiatic Society of Mumbai, attend the JGEPC Awards function at Bharat Diamond Bourse in BKC, and visit Lal Bagh Chauraha. At the Asiatic Society of Mumbai, the Union Home Minister will inaugurate a specially curated exhibition of manuscripts titled Sri Ganesh Gyanarthi. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप और राज सुरमई लेकर माधुरी है आज की रात आप सभी के साथ। नमस्कार। कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।

फिल्म कच्चे धागे से ये गीत सुन रहे थे आप अलका याग्निक और हंसराज की आवाजों में। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसे देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।

लता और शब्बीर कुमार की आवाज में ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म गुलामी से। अगले गीत की तरफ बढ़ें उससे पहले चंद लाइनें आपके लिए। बहुत खुश था वो, बहुत खुश था जो महफिल को हंसाकर, बहुत रोया वो घर के पास आकर। यहां आसीब के मारे हैं सारे, यहां तो पेश गोई मत किया कर। सखी एक बांटता है रोज खुशियां, तुलुए सुबह से पहले उठाकर। बहुत खुश था जो महफिल को हंसाकर, बहुत रोया घर के पास आकर।

फिल्म प्रेम रोग से ये गीत सुन रहे थे आप, जिसे गाया लता जी और सुरेश वाडकर ने। बाट दुनिया भर के लोगों जोहता रहता हूं मैं हूं दरवाजा मोहब्बत का खुला रहता हूं मैं। जिंदगी हैरान है मेरी ढिठाई देखकर, मुस्कुराकर गम के चालें काटता रहता हूं मैं। क्या ये मुमकिन है कि सजदे सब हो मेरे रायगा, जबकि तेरे इश्क में ही बावला रहता हूं मैं। और ढूंढने जो भी उसे निकला वो खुद को खो ही गया, लोग कहते हैं मुझे भी लापता रहता हूं मैं। बाट दुनिया भर के लोगों जो होता रहता हूं मैं हूं दरवाजा मोहब्बत का खुला रहता हूं मैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये सफर है रात सुरमई का, जहां बहुत सी बातें होती हैं और साथ ही साथ ऐसे नगमे हम आप तक पहुंचाते हैं जो हम सभी के दिलों को छू जाते हैं। और जब बात इश्क की होती है तो मुमताज़ का नाम आना तो लाजमी है, और जब मुमताज़ की बात होती है तो प्यार की यादगार वो इमारत भी याद आती है जिसका नाम है ताजमहल। और ताजमहल फिल्म से ये गीत आप सभी के लिए।

फिल्म ताजमहल से गीत सुना आप सभी ने हरिहरन और प्रीति उत्तम की आवाजों में। जबानों पर उलझते दोस्तों को कौन समझाए, मोहब्बत की जबां मुमताज है सारी जबानों में। जी आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 2:50 और हो चुके हैं पूरे 20 सेकंड। रात सुरमई का ये सफ़र है जो यकीनन आप सभी को बहुत सुरमई लग रहा होगा। चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं हम।

हौसला भले न दो उड़ान का, तस्करा तो छोड़ दो थकान का। जी हाँ, अब तो वाकई थकान से होने लगी है, क्योंकि अब बारी आ गई है आपसे इजाज़त लेने की। तो इजाज़त दीजिए माधुरी को, रात सुरमय का ये सफ़र यहीं तक, लेकिन आप बने रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में प्रसारित होंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण भी किया। इनमें फिलीपींस की प्रथम महिला लुइस अरनेता मार्कोस, ईरान के राष्ट्रपति की पुत्री जहरा पेजिशियन और ईरान के राष्ट्रपति के दामाद हसन मजीदी डिजाल शामिल रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि फॉरेन करेंसी, नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिटरी और दूसरी योजनाओं से आने वाले निवेश बहुत मजबूत रहा है। एक साक्षात्कार में श्री मल्होत्रा ने कहा कि ये मजबूत निवेश भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में निवेशकों के भरोसे को दिखाता है और कम समय में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की क्षमता को भी सिद्ध करता है। बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी पर श्री मल्होत्रा ने बताया कि रिजर्व बैंक के पास नकदी को संभालने के लिए कई उपकरण हैं और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करेंगे। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.85 किलोमीटर लंबी यह सड़क स्वदेशी तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल दर्शाती है। इस तकनीक में स्टील उत्पादन से निकलने वाली स्टील स्लैग को सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में बदला जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान किए जाने वाले समारोह में कहा कि स्टील स्लैग रोड तकनीक से सड़क निर्माण की लागत करीब 40% तक कम हो जाती है और पारंपरिक सड़कों की तुलना में इनकी मजबूती 4 गुना अधिक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये पवित्र ग्रंथ सदियों से मानवता को निस्वार्थ सेवा, मानवीय गरिमा और एकजुटता का मार्ग दिखाता आ रहा है। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. The BRICS nation adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
1: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
2: The 18th BRICS summit kicked off yesterday with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the growing institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers' emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
1: क्या हम seafarers emergency support network बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की maritime authorities और missions को जोड़ा जाएगा इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स मेडिकल असिस्टेंस परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है
2: After the conclusion of the session on the first day, Prime Minister Modi and the BRICS leaders planted saplings at the venue outside the lawns of Bharat Mandapam and posed for a family photo. They also visited the India Innovates exhibition. Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. Prime Minister Modi highlighted that both the sides must be guided by three mutuals, mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. The two leaders expressed commitment to a fair, reasonable, and mutually acceptable resolution of the boundary question proceeding from the political perspective of their overall bilateral relations and the long-term interests of the two people. Prime Minister's Museum and Library hosted the visiting dignitaries participating in the BRICS summit. They included the First Lady of the Philippines, Luis Renata Marcos, daughter of the President of Iran, Zahra Pezeshkian, and son-in-law of the President of Iran, Hassan Majidi Dosaj. During the visit, the dignitaries toured blocks 1 and 2 of the museum and experienced the immersive exhibits at the Anubhuti section. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a bilateral meeting with Malaysian Minister of Investment, Trade and Industry, Datuk Seri Johari Abdul Ghani in New Delhi. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both the sides reviewed the India-Malaysia economic partnership and discussed ways to boost two-way trade and investment, improve market access, and strengthen the supply chain linkages in areas of complementary strengths. In T20 Women's Asia Cup Cricket Final, India will face defending champion Sri Lanka in Dubai today. The summit clash will begin at 8 p.m. Indian time. Seven-time champions India reached the final unbeaten, topping Group A with 3 wins before defeating Bangladesh by 40 runs in the semi-final. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार दोस्तों, रात अपनी रफ्तार धीमी कर चुकी है। दिन भर की भागदौड़ जैसे कहीं पीछे छूट गई हो और अब हमारे पास है थोड़ा सा वक्त अपने लिए, अपनी यादों के लिए और उन एहसासों के लिए जिन्हें हम अक्सर दिन के उजाले में महसूस ही नहीं कर पाते। कहते हैं कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, बस दिल से दिल का रास्ता होना चाहिए। आप सुन रहे हैं हमराही आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से और मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीता फिल्म अजनबी से। आज की रात हम बात करेंगे किसी से जुड़ने की। किसी से जुड़ना हमेशा उसके साथ होना नहीं होता दोस्तों, कभी कभी कोई बहुत दूर होकर भी हमारे बेहद करीब होता है। उसकी एक आवाज चेहरे पर मुस्कान ले आती है, उसका एक संदेश पूरे दिन को खूबसूरत बना देता है, और कभी कभी तो सिर्फ उसका ख्याल ही दिल को सुकून देने के लिए काफी होता है।

0: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन किसी के दिल में अपनी जगह बनाना आसान नहीं। किसी से जुड़ाव शायद यही है कि आप उसके साथ अपनी खुशियां बांटना चाहें, अपनी परेशानियां बताने से पहले उसी का ख्याल आए, कुछ अच्छा हो तो उसे बताने का मन करे और कुछ अच्छा ना हो तो उसकी आवाज सुन लेने से ही मन हल्का हो जाए। शायद यही होता है एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता।

अचानक आते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। सुबह खुलती है तो उनका ख्याल, दिन में कोई बात हो तो उन्हें बताने की इच्छा, शाम ढलती हो तो उनसे बात करने का मन और रात आती है तो उनकी याद। यही तो जुड़ाव है दिल से दिल का, और शायद यही प्यार है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:28 और ठीक 48 सेकेंड। कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग

रॉकी फिल्म के इस खूबसूरत गीत को आवाज दी थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। जानते हैं आप, कुछ रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात होती है उनमें बहुत कुछ कहना नहीं पड़ता, आप चुप हैं, सामने वाला समझ जाता है कि आप कहते हैं मैं ठीक हूँ और वह आपकी आवाज़ सुनकर कह देता है नहीं तुम ठीक नहीं हो। कितना खूबसूरत होता है ना जब कोई आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी खामोशी पढ़ने लगे। शायद इसी को कहते हैं दिल से जुड़ना, क्योंकि आवाज़ तो हर कोई सुन सकता है लेकिन खामोशी सुनने वाला कोई खास ही होता है।

कभी कभी दो लोग एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, शहर अलग, रास्ते अलग, समय अलग, लेकिन फिर भी एक दूसरे की जिंदगी में मौजूद रहते हैं। फोन की स्क्रीन पर एक नाम दिखाई देता है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है और लगता है जैसे दूरी कम हो गई हो। तभी तो कहते हैं दूरी रिश्तों को खत्म नहीं करती, अगर दिलों में जगह बनी रहे।

दोस्तों, प्यार हमेशा आई लव यू कहने से नहीं होता। कभी प्यार इस बात में होता है कि घर पहुंचकर बताना, कभी खाना खा लिया, कभी आज आवाज कुछ थकी हुई लग रही है, आराम कर लो, और कभी सिर्फ इतना कि मैं हूं, तुम चिंता मत करो। ये छोटे शब्द शायद दुनिया के लिए मामूली हैं, लेकिन जिस दिल को इसकी ज़रूरत होती है उसके लिए ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। किसी का ख्याल रखना, उसकी खुशी में खुश होना और दुख में चुपचाप खड़ी रहना, यही तो जुड़ाव है।

रात में यादें कुछ ज़्यादा करीब आ जाती हैं, दिन में जिन बातों को हम टाल देते हैं रात में वही हमारे सामने बैठ जाती हैं। कोई पुरानी बातचीत, कोई मुलाकात, किसी की हंसी, किसी की मुस्कुराहट, और फिर लगता है कि काश वो इंसान इस वक्त हमारे साथ होता। शायद रिश्तों की यही खूबसूरती है कि इंसान दूर हो सकता है, एहसास नहीं, जिससे दिल जुड़ जाए वो दूरी में भी साथ रहता है।

आज की रात उनके नाम जो दूर होकर भी हमारे करीब है, इसी एहसास के साथ मैं अर्चना गोयल हमराही कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में मैं आपसे फिर जुड़ूंगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। भारत चौथी बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कल पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी, अनेक संस्कृतियों और एक लय की भी विशेष प्रस्तुति रही, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने अनूठी सामूहिक संगीत प्रस्तुति में एक साथ भाग लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कल से 3 दिन का मुंबई दौरा आरंभ किया। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे और हिंदी पर केंद्रित 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है। समय हुआ है सुबह के 4:11 और कार्यक्रम अरुणिमा के साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार, सुबह के इस खूबसूरत बेला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं ना, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज को सुंदर बनाने का अधिकार हमारे पास है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ईश्वर की प्रार्थना के साथ।

दोस्तों, सुबह का समय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं है, ये खुद से मिलने का समय है। दिन शुरू होने से पहले अगर हम अपने मन से दो बातें कर लें तो पूरा दिन बदल सकता है। आज सुबह खुद से पूछिए, मैं आज क्या अच्छा कर सकता हूँ। किसी के लिए एक अच्छा शब्द, किसी की मदद, किसी को माफ़ करना, या शायद खुद को थोड़ा समय देना।

हर बड़ा बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं, कई छोटे छोटे अच्छे कदमों से शुरू होता है। तो आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आज मैं शिकायत कम करूंगा और समाधान ज्यादा ढूंढूंगा। आज मैं चिंता कम करूंगा और प्रयास ज्यादा करूंगा। और आज मैं खुद पर थोड़ा और विश्वास करूंगा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:25 और ठीक 25 सेकंड। आइए दोस्तों इस सुबह की शुरुआत करें उस शक्ति को याद करके जिसने हमें एक और दिन दिया है। हे ईश्वर, आज का दिन हमें धैर्य दीजिए, सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने का अवसर दीजिए और इतनी शक्ति दीजिए कि मुश्किलों के सामने हम हार न मानें।

भी सकारात्मक बात है जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए। हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन कभी कभी रुक कर देखिए, आपके पास एक नया दिन है। सांसें हैं, अपने लोग हैं, कुछ अपने हैं, कुछ उम्मीदें हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके पास फिर से कोशिश करने का मौका है। कृतज्ञता मन को बहुत हल्का कर देती है। आज सुबह बस 3 चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, शायद आपका मन पहले से ज्यादा शांत हो।

साथियों, क्यों ना आज खुद से एक वादा करें, मैं अपने लिए बुरा नहीं बोलूंगा, मैं अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी पहचानूंगा, मैं हर गलती से सीखूंगा, मैं किसी की सफलता से नहीं जलूंगा बल्कि उसे प्रेरणा लूंगा, और सबसे जरूरी, मैं अपने सपनों को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि रास्ता मुश्किल है।

काली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार, अल्लाह करे ये दिन यूं ही

याद रखिए, रास्ते मुश्किल हो सकते हैं लेकिन मंजिल असंभव नहीं। कभी कभी हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए बस एक चीज की जरूरत होती है, वो है एक और कोशिश। तो अगर कोशिश असफल हुई थी तो आज फिर कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अगली कोशिश ही आपकी सफलता बन जाए।

सुबह सुबह अपने मन में पुरानी शिकायत मत भरिए। कल किसी ने कुछ गलत कह दिया, किसी ने आपको समझा नहीं, किसी काम में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, उसे कुछ देर के लिए वहीं छोड़ दीजिए। हर सुबह पिछले दिन का बोझ लेकर चलेंगे तो नए दिन की खूबसूरती कैसे महसूस करेंगे। इसलिए कल को अनुभव बनाइए, बोझ नहीं। जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना सीखिए।

तो दोस्तों अब ये खूबसूरत सुबह आगे बढ़ रही है और सुबह की सुगबुगाहट होने लगी है और जिंदगी हमें आवाज़ देने लगी है कि चलो आज कुछ अच्छा करते हैं।

इस खूबसूरत गीत और संदेश के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। 5:10 पर भोर सुहाग कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आज ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की और ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने के साथ साथ ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया गया। भारत चौथी बार इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी अनेक संस्कृतियां एक लय की भी विशेष प्रस्तुतियां रहीं, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने अनूठी सामूहिक संगीत प्रस्तुति में एक साथ भाग लिया। विभिन्न देशों के विविध संगीत परंपराओं से सजी इस सिम्फनी में साझा कलात्मक अभिव्यक्ति रही, ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और एकजुटता की भावना प्रतिबिंबित हुई। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कल से 3 दिन का मुंबई दौरा आरंभ किया। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे और हिंदी पर केंद्रित 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में गृहमंत्री श्री गणेश ज्ञानरती शीर्षक से पांडुलिपियों की विशेष रूप से प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे वहां पुस्तकालय का दौरा करेंगे, एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करेंगे और उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने अरुण जेटली स्टेडियम में आज होने वाले भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि दर्शकों की आवाजाही के कारण स्टेडियम के आसपास यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने बताया कि इस दौरान बहादुर शाह जफर मार्ग, DDU मार्ग और JLN मार्ग पर आवश्यकता के अनुसार यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तित होने की संभावना है। यातायात पुलिस ने दर्शकों को उनके प्रवेश द्वार के अनुसार निर्धारित मार्गों से स्टेडियम पहुंचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज और बिजली की स्थिति बनी रहेगी। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने वाले उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग को अपनी तस्वीर भेंट की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने उस दावे को फर्जी बताया है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली चीनी मिट्टी की स्मृति चिन्ह चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने 12 अक्टूबर 2019 को तमिलनाडु के मामल्लापुरम में हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सस्ते दाम पर वॉशिंग मशीन के पुर्जे देने के नाम पर गुजरात को एक व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए ठगे थे। इसके साथ ही

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं सुबह की वेला में कार्यक्रम बहुत सुहानी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके साथ अर्चना गोयल। एक नई सुबह, एक नया सूरज, हवा में घुली ताजगी, पेड़ों पर पत्तियों पर ठहरी ओस और पक्षियों की चहचहाहट, जैसे प्रकृति हमसे कह रही हो, कल चाहे जैसा भी था, आज तुम्हारे पास एक नया अवसर है। भोर सुहानी की सुबह की ताजगी के साथ करेंगे कुछ ऐसी बातें जो आपके चेहरे पर मुस्कान और मन में उम्मीद जगा दे। तो चलिए आज की सुबह की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना के साथ।

दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि प्रकृति हमें बिना कुछ कहे कितना कुछ सिखाती है? पेड़ देखिए, आंधी आती है, तूफान आता है, कभी शाखाएं टूटती हैं, लेकिन मौसम बदलते ही वही पेड़ फिर नई पत्तियों से भर जाता है। प्रकृति यही बताती है कि मुश्किलें स्थायी नहीं होती। अगर पेड़ हर पतझड़ के बाद कह देता कि अब मेरे जीवन में बस सूखापन रहेगा, तो कभी नई हरियाली नहीं आती। इसलिए अगर जिंदगी में सूनापन लग रहा है, तो याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।

सुबह की पहली किरण कितनी खूबसूरत होती है ना, अंधेरों को धीरे धीरे पीछे छोड़ती हुई और आसमान पर रोशनी की एक नई लकीर खींचती हुई। सूरज हमें रोज एक संदेश देता है। हर रात के बाद सुबह होती है, तो फिर हम अपनी परेशानियों से क्यों डरें? आज अगर रास्ता मुश्किलों में है तो चलना मत छोड़िए, सफलता यदि दूर है तो कोशिश करना मत छोड़िए।

सुबह सुबह जब किसी बगीचे में जाइए तो फूलों को देखिए। गुलाब को इस बात की फिक्र नहीं कि सामने वाला फूल उससे ज़्यादा खूबसूरत है या नहीं। सूरजमुखी को ये फिक्र नहीं कि वो गुलाब क्यों नहीं। हर फूल अपनी पहचान के साथ खिलता है। शायद यही बात हमारे लिए भी है। किसी का बसंत आज है तो किसी का कल आएगा। बस इतना देखिए कि क्या आपका आज कल के आज से थोड़ा बेहतर है।